0: के पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लाजिम पार्क काठमाडौँ
1: उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै

0: The Complete Radio Station 91.6.
1: राम्रो र भरपर्दो इन्टरनेट र टिभी चाहियो, ViaNet र Via TV को साथले पाइयो। हजुर, अब पावर अप योर परफॉर्मेंस विद द बेस्ट वैल्यू इंटरनेट एंड टीवी सर्विस इन टाउन। 200 Mbps स्मूथ एंड फास्ट अल्ट्रा 5 पावर होस मात्र रु 999 मा र 175 प्लस च्यानल सहित को फीचर फुल Via TV मात्र रु 150 मा। इंटरनेट ओन्ली र टीवी सहित को अन्य पैक पनि उपलब्ध छ। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा परफॉर्मेंस, अल्ट्रा वैल्यू।

0: வீட்டுல சம்பந்த காசா ஜான் மசாலா
1: அஹிலே 3 को
2: टाइम चेक का साथ मा केक भने कई काठमांडू बेकरी और फ्रेश बेकरी इन टाउन साथ ही
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी